संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जापते हर हर नीत, भले सुकरनी सोभा।

नूर अरसह कुरसह चटिया तुद दिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साह दे साहु जिस

सेज सोहने चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कै करमा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन

जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती, सो पार पया कहो नानक करते किया बातां।

सोखी गावण तुदनो वीर करारे गावण तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावण तुदनो रतनो पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावण तुदनु जोध महाबल सूरा गावण तुदनु खाणी चारे गावण तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनु गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब सच्चा

रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड वड्डा डीठा हुए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए

साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप ही छोड़िया आप मिलाया तू उधर ही आओ

पार अम्रे दुष्ट सबै तम काबो आप हाथ दे मोहे बचाबो सुखी बस मोरो परवारा सेवक सिख सबाय करतारा मोर अच्छा निज करद कर सब बैरण को आसंग रहा पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी यह चौन चौन शत्रु हमारे मारी यह आप हाथ दे मुझे उबर है मरण काल का त्रास निवर है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे और अच्छा

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन बजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी। सेवगन गो सेवगन सुख दियो, सत्रण गो बल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिया स्थूला, सफर कृपा दुष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सृठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब हीते रहत निरालम,

देव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्त न भव, आप अपनी बुद है जेती, भरनत भिन्न भिन्न तोय तेती, तुमरा लखा न जाहे पसार, के विद सजा प्रथम संसार, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही पुप्पा, अंडज जेरज से तज किन्नी, उत्पुज खान बहर रच दिन्नी, कहूं भूल राजा हब बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्यम भव, अवरछा मेरी तुम करो, सिख उबार आसिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझताव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हावे मरे, पुरख जमन पग परे।

तिहारे तिनके तुम संकट सब ठारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट लह है। रक्षा हुए ताए सब कल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दिष्टन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो। रेद से दिकारमो सब होई दुष्ट छा शवाय सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जन नर नाम तिहारों कहा दार्द दुष्ट दोगते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्व ठावर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। केलवे के सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता। श्री अस्तुजप पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकला। मन वांछत बल पावे सोई दुखनाथ से व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग यो याहे सुरसना पावई सुने।

चौपाई संबत सत्रह सहसपणिजा अर्ध सहसवन तीन कहजा भाद्रव सदी अष्टमी रववारा तीर सदर्व ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चित्रे मंत्री पूब संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत बजो दोहरा दा जान गरदास पर कि जा कृपा अपार आप हाद राख मोहे मन क्रम बचन विचार चापई मैं ना गणेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ

अब ना जान करो रखवार, बाह गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया। देख तेग जग में दो चल, राखा में और ना दल। तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब में दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज़,

तो है। अपना जान करो ब्रत बारा, तुम साहिब मैं किंग कर थारा, दा जान दा हाथ उबारो, अमरे सब एरियन संगारो, प्रथम तरह भगवत को ध्याना, बाहुर करो कविता विदनाना, कृष्ण जथा मत चरित्रो चारो।

दास गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया

जन्म पदार्थ जीत हर शरणी रहाओ, करत बिकार दो कर चारत, राम रतन रिद तिल ना तारत, भरन पोखन संग औद बिहाणी, जय जगदीश की गत नहीं जानी।

एक पद गंध, बिन सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत स पावे सो आरती होए।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

न जानी ओत पोत जन हर सराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जप हर का भगत प्रगट नहीं शप हर की भगत मुक्त बह करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर दुख लथा नाम की महिमा संतरद वसा संत प्रताप दुर्त सब नसा संत का संगवट भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को हे सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अबोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र से मृत बखियान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरिया अनेक प्रकार की बहु जतना बुन दान हामे बहु रतना शरीर घटाए हमें कर राति वर्त नेम करे बहु पांति नहीं तुल राम नाम विचार

एक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्याप सुप्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुन है मिथ्या स्वर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेघत पार तिर उपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार गोतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन्नई पर पुकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब है सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरति सागत की आरजा साज बना के हब सुचा बिरथा नाम बिना धन अन्मुखावता के दुर्गंध बिन सिमरंदर रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यों गिरबन के नरार धाम तन तन तेजन जय गट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर का शबर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गांड लावत जान

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तुस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तल्लामे तुसको सिमरत परम गत पामे जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तसे ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाट पहर ताका जस गावीजै जय प्रसाद तुझ सब कहु मान भुगता को जस रसन मखाना जय प्रसाद तेरो रहिता धर्मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान पावे नानक पात सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिबलावत सराम सनेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस गहत जय प्रसाद तेरे सकल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताका जय प्रसाद तुझ गोना पहुचे मन सासा सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आभूखन पहरीजे मंत सिमरत क्यों आलस कीजे जय प्रसाद असभ हस्त असवारी मंत से प्रभु को कबूना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोहे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखा है जय प्रसाद तू करे पुन बहुदान मनाड़ पैर कर तसका त्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पतरा है गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करण नाथ जय प्रसाद वेखे बिस्मा जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना

राष्ट्रपति कई गोट होए पुजारी, कई गोट आचार व्यवहारी, कई गोट भय तीर्थवासी, कई गोट बान भ्रमे उदासी, कई गोट वेद के स्रोते, कई गोट तपिसर होते, कई गोट आत्म ध्यान धारे, कई गोट कब का विचारे, कई गोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते गंध न पावे, कई गोट भय अभिमानी, कई गोट अंध ज्ञानी, कई गोट कृपन कठोर, कई गोट अभि आत्म निगोर, कई गोट पर दर्भ को हिरे, कई गोट पर दुख न करे, कई गोट माया श्रमाहे जिजित, कई गोट माया श्रमाहे, कई गोट प्रदेश प्रमाहे जिजित लाभ लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई गुण सिद्ध जति जोगी, कई गुण राजे अरस भोगी, कई गुण पंखी सर्व उपाय, कई गुण पाथर बृखन बजाए, कई गुण पवन पानी बैस अंदर, कई गुण देश भूमंडल, कई गुण शशि अर सूर नक्षत्र, कई गुण देव दानव इंद्र से रे शत्र, सगल समग्री अपने सुतारे, नानक जैस जिस भाव है तैस तिस निस्तार, कई गुण राजस्थान सात, कई गुण वेद पुराण सिमरतर शास्त, कई गोड़ किए रतन समुद, कई गोड़ नाना प्रकार जंत, कई गोड़ किए शिर जीवे, कई गोड़ गिरी मेर स्वर्ण थी वे, कई गोड़ जख किन पिसाज, कई गोड़ भूत रे सुगन मृगाज, सबते नेरा है सब ऊते दूर, नानका अलप त्रया प्रभुर, कई गोड़ पाताल के वासी, कई गोड़ नरक स्वर्ग निवासी, कई गोड़ जन्मे जीवे मरे, कई गोड़ बहु जूनी फिरे, कई गोड़ बैठत ही खाए, कई गोड़ का लेथक पाए, कई गोड़ किए धर्मंत, कई गोड़ माया मैं जंत, जय जय भाणा तै तै रखे नानक सब जी प्रभु के हाथे, कई गुण भय बैरागी राम नाम संग तिल तिल लिप लागी, कई गुण प्रभु को खो जंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई गुण दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई गुण मांगे सात संग पार ब्रह्म तिल लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन, कई गुण खाणी अर खंड, कई गोट आकाश ब्रह्मांड, कई गोट हो अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार बसरियो भासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई गोट किन्ने भगवान प्रभु से ब्रह्मा इस माता का अंत ना जाने कोय, आपे आप नानक ब्रह्म सोए, कई गोट पार ब्रह्म के दास तिन हो बतातम प्रकाश, कई गोट तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई गोट नाम रस भी में अमर भय सा सा दी जीवे, कई गोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे,

आर अनक जतन करे आदम नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जागा मन होए कहो नानक दाकी तरबल सोए जब लग जाने मोजते का छोए तब सो सुख न आई कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही जीते जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्मदाए दिस जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हम छूटा सहस खटे लाख उठता बै त्रिपत न आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे नैत्र बतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कौ राजा सबन मनोरथ

सदा बिजोग संतगरिंदा दोख मैं दोख नानक संत भावित उसका भी हो मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को ढाल लागे संत के दुखी को सब त्याग गया है संत का दुखी मह अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म है मरा है संत की दुख ना सुख ते डरा है संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावे थालय मिलाए संत का दुखी तभी ते टूटा है संत का दुखी कितने काज ना पहुंचा है संत के दुखी को ध्यान भरमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृता की लोथा संत के दुखी की जड़ किश ना है आपन भी जापे ही खाहे संत के दुखी को वरना राखन हार नानक संत भावे तलय उबार संत का दुखी यूं बिल लाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भुखा रहे राजा है जो पावक इंद्र नहीं तरापै संत का दुखी छुट अकेला जो बुआड़ दिल खेत माहे दुवेला संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सदम त्या कहत किरत नंद का दुरी भया नानक जोत सभावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ू भय जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहगाइय संत का दुखी ना मरे ना जी भाइय संत के दुखी की पुजना आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना तृष्ठ कोय जैसा भावे तैसा कोई होय पया गिरत ना मिठा कोय नानक जाना सच्चा सोए सब घट दिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस सतगुरु दिन रात से ध्यावो सास गिरास

सेवक नाम कारंग सेवक अपर पालनहारा सेवक राखे निरंकार सो सेवक जिद्या प्रभुधारे नानक सो सेवक सास सास हमारे अपने जन का प्रथा ढाके अपने सेवक की सरबर राखे अपने दास को देव बटाए अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि गदमित कोय ना लाखे प्रभु के सेवक का को ना पहुँचाए प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया नेकी गिरी में अकल राखे भस्म करे लसकर

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अब्र पाप समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो नाम अरवाथ एतन संजो हो वो भगवंत संजना का निर्मल मन दे का सराखो मन बाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुकृत बाचे भीत सो सुख साधु संग प्रीत सो सुख साधु संग प्रीत जिसको शोभा को करे भली करनी सा शोभा बजर की सरणियन को भावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दरगे प्रमाण मन प्रबुद्ध हर के नाये दैत स्थापते आ बैठाए ताको विघ्न न लागे गोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण होयास भक्त पाया तन मरगास तितकर जाए बसे बनासी का मनान काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का छो का छा आवा गमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का वो उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छुटन हारे सिमर सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंजत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तो क्या लपटा मैं मूर्ख मना सुतमीत गुटा पार बनता इनते कहो कमन इनते कहो तो कमन सुना था इनते कहो तुम कमन सुना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार आ सस्ती रथ सवारी झूठ रम झूर बाजारी जिंदी तस बजे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातु ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मी नरम हो तुम्हारो जीत

गावर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत भजन अर के गुण गाओ परांतरण का स्वभाव आठ पैर पर भेखो नेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन बदे सिर दे बसाव मन छे नानक बल पाव हालत बल दे रे सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसे साज ब्रिखिया मंत्र नाम जपो ले बलाए दुख दर्द मनते पाओ जाए सजबा पार करो बा पारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक भावर न आवे जाए दसे दूर कहाँ को जाए बरे राख न हार दे आए निर्भाव जब सगल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तजन का कोई ना बचना सिर पर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप

दूर कथ ना कथी ना आवे तोट काथ काथ कथी कोटि कोट कोट तिरदा दे लैंदे थक पाहे जुगां जुगंतर।

दुख पार हर सुख कर लै जाय। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाई। गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई।

निरंकार असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाढ़ असंख जोग मन रह उदास।

तंगनेर पर में नमास्तंग निर्देशे नमास्तंग निर्पेशे नमास्तंग निर्नामे नमास्तंग निर्कामे नमास्त

शांत तवै प्रसाद आद रूपे अनाद मूर्ते जोन पुरखे अपार सर्व मान तिरमान देव अपेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कहो पुन काल जतर तत्र बिरहार ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाव न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरखे उदार मूर्त अजोन आद असेख

चतर चक्र हरता, चतर चक्र दाने, चतर चक्र जाने, चतर चक्र वर्ती, चतर चक्र परती, चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले, चतर चक्र पासे, चतर चक्र वासे, चतर चक्र माने, चतर चक्र दाने, चाचरी छंद।

पवित्र परसी से अदिसे अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छज देश है क्या भिज भिस है क्या गांज कर्म है क्या भांज भरम है।

केसर बत्र देस है, केसर बत्र भेस है, केसर बत्र काल है, केसर बत्र पाल है, केसर बत्र हंता, केसर बत्र गंता, केसर बत्र भेखी, केसर बत्र भेखी, केसर बत्र काज है, केसर बत्र राज है,

गणि मुल्क राज है। निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, स्वभावतल राज है, सदा सर्वसार है, स्वभावतल सलाम है, सदैवल अकाम है।

अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के अचलं के अमितो पसा है, के आतुम प्रभा है, के अचलं अनाग है, के अमितो पांग है, माधु पहर शांत।

साहिब गुरदयाल कृपा करता साहिकार कराए सी सो से सवागर जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मना होवे प्रमाण था कसमे कमेल पाए सी कसमे पावे सो कर।

0: गुरु रामदास राखो शरणाई
1: वाहिगुरु जी का
0: खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ तुम दाते ठाकुर प्रतपाल नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रत पालो हम बारिक तुमरे तारे। सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास

पवन है राजाऊ। ऐसे ज्ञान प्रगटिया परखोतम कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पहरिया काय कर गावना एको ओंकार सतगुर प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडल जाबे आशत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद नायन स एक अग्ञान सो नागा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तू नरहर मनो बिसारिया। फिर पछतावेगा मूड़िया तू कवन कुमत भरम भग लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा मन विचरे अनरादा रहा। बाल बिनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस में समेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे। जाप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या छलिया काम काल मत लागी तो मान आन सकत कर बांधया। तरण तेज पार त्रह मुख जो है सर अवसर ना पछाणया मन काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणया। सुत संपत देख अर मन गर्भया राम हृदय तय खोया वरमृत माया मन तो लय तौ भग मुख जन्म विगोया। उन्नर केस कुसुम ते धौले सबत पताल की बाणी लोचन सिमरै बुद्ध बल नाठी ता काम पवस मधाणी। तांते बिखे पई मत पावस काया कमल कमला नावगत बाण छोड़ अमृत मंडल तव पाछे पछताणा। निगटी देख दे देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी घर आंगन ना सुखाई। बेनी कह सुनो रे भगतो मुरण मरण मुकुत किन पाई श्री राग। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। जाओ पै हम ना पाप करंता हे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता रहा। तुम जो नायक आशा अंतर जामी प्रभ ते जान जानी जे जान ते स्वामी। शरीर राधे मुको विचार देहु रविदास साम दल समझा वेको राग माज। चौप दे घर पहला महला चौथा एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूरत आजुनी सहभंग गुर प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को बिरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर चलया बन पल्ले मेरा प्राण सुखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दिड़ाया मन हर निचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया।

सतगुरु मित्र मेरा बाल सुखाई हौं रह ना सका बिन देखिए मेरी माई हर जियो कृपा करो गुर मेलो जन नानक हर धन पल्ले जियो माज महला चौथा मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हौं हर बिन दूजा वर ना जाना कोई सज्जन संत मिले वडभागी मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो हौ मन तन खोजी भाल भलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला अंबारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल विकसै जियो मैं बिन गुर देख नींद न आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे हर हर दया करो गुर मेलो जन नानक गुर मिल रसै जियो माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिय हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग भौजल दुतर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करे हा मेरे प्रीतम का मैं देह सुनेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर निरहरी

रहा हूं। एक घड़ी ना मिलती ता कल युग होता, उन कद मिले फिर तुद भगवंता, मुझे रहन ना विहावे नींद न आवे। बिन देखे गुर दरबारे जियो, हम कोली जियो कोल कुमाई, ते सचे गुर दरबारे जियो रहा हूं। पाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मैं पाया। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमाई।

कर कृपा मैं साध मिलाया, मन तन शीतल धीरज पाया, प्रभ अविनाशी बसिया घट पीतर, हर मंगल नानक गावे जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवागम गोचर लाख्य पेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख जागाती जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे,

जो साहेब तेरे मन भावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहेब मन माना जियो तू संतन की करा है प्रतपाला संत खेला है तुम संग गोपाला

मन भाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अकाना जियो। माज महला पंजवा। तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंदम चातरक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम्ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारक पी खीर अगावे त्यों जा त्यों ज्यों निर धन धन देख।

संतन मुख हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग की जाया हर अमराह मर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मल।

प्राप्त जिस शब्द गुरु मन उठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्तिया गाना जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक बागी ठा जियो हर एक स हाथ आया वरसाने बो तेरे तिस लाग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाये कौ नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा।

मुक्त भया जिस हृदय वसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज सुमाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याये सगले अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल विख काटे।

सुन शब्द विचारा अनद विनोद करे दिन राती सदा सदार केला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा।

पीड़ित गुर दुर्साया जियो अगम अगोचर किच मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुदी मिटी चूका भुलावा गुरमन ही मैं प्रगटाया जियो अनंद मंगल कल्याण निदाना सुख सहज हर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी अपना नाव नानक घर मैं आया जियो माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तुम प्रीतम ठाकर अत पारी तुमरे करदब तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कथा।

सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सब सुख दिए जीव नाम जपता सर्ब सुख पाइए सब भाऊ बिनसे हर हर त्याई है जिन से

तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिस का सा तिस ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडपागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीह पाया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जियो जिस के से तिन

दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध से आनप किछु ना जापे।

परे भंडारा आदि अंत मत प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला दे।

पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेविया तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद नाम अवखद, जिन जन तिर पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गावे दिन राती, सफल यह है कारी जियो। दृष्ट तार अपन

राग माज अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सुबाए साची दरगे महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबां सच्चे मन पति आवणिया हौ वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम

निर्मल नाम त्यावनया जीवन मरणा सब तुदे ताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई नानक नाम त्याय सदा तू जमन मरण सवारण आज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमी अपारा बिन तकड़ी तो लै संसारा गुरमुख होवे सोई बूझै गुण कह गुणी सुमावणया हौ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणया जो सच लागे से अणदन जागे दर सचे सोभा पावणे आ राम आपे सुने तैं आपे वेखै जिसनू

0: धारो
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम
0: जना के मन विश्राम रहाओ
1: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे
0: प्रभ के सिमरन दुर्गम नसे
1: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
0: प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे
1: प्रभ सिमरत कछु बिघ्न न लागे
0: प्रभ के सिमरन अंधन जागे
1: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे
0: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभ का सिमरन साध के संग
0: प्रभ
1: के सिमरन रित सिद नौ निद
0: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
1: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
0: प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा
1: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी
0: प्रभ के सिमरन दरगह मानी
1: प्रभ के सिमरन होए सो भला
0: प्रभ के सिमरन सो फल फला
1: से सिमरे जिने आप सिमराए
0: नानक ताके लागो पाए
1: प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा
0: प्रभ के सिमरन उतरे मुचा
1: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे
0: प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे
1: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा
0: प्रभ के सिमरन पूरन आसा
1: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए
0: अमृत नाम रिद माए समाए
1: प्रभ जी बसे साध की रसना
0: नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरे से तनवंते
0: प्रभ को सिमरे से पतिवंते
1: प्रभ को सिमरे से जन परवान
0: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरे से बे मोहताजे
0: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे
1: प्रभ को सिमरे से सुखवासी
0: प्रभ को सिमरे सदा विनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दे अल्लाह
0: नानक जन की मगर वाला
1: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी
0: प्रभ को सिमरे तिन सत बलिहारी
1: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे
0: प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे
1: संत कृपा ते अनदिन जाग
0: नानक सिमरन पूरे भाग
1: प्रभ के सिमरन कार

0: जामी
1: अपनी गत में जानो
0: आपन संग आप प्रभराते
1: तुमरे उस्त तुम ते होए
0: नानक अवर न जानस कोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल करम।

0: नानक जस कह
1: देह प्रसाद सुने कर्ण नाद
0: प्रसाद देखे विश्वनाद
1: देह प्रसाद बोले अमृत रसना
0: प्रसाद सुख सहजे बसना
1: देह प्रसाद

0: स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे
0: कई कोट भोजनी फिरे
1: कई कोट बैठ ही खाहे
0: कई कोट चाले थक पाए
1: कई कोट किए तनवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जय जय पाणा तै रखे
0: नानक सब कुछ रखे।